0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

पटक पटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बीबी टिकेट टिकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: अरे का एली पिंडिस के मम्मी, का हाल बा?
2: सुनी, राउर बहरा कमैला से हमार कवन सुख बा?
1: काहे सुख नहीं है दादा, सब सुख तो तहरे बा।
2: अच्छा एगो बात बताई, हमार एसी वाला पैसा अकाउंट में काहे ना डलाइल?
1: अच्छा ठीक बा, आवत अनिनू।